0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा
1: हूँ। अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।